ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांगविला जैन का कोनिचिवा, नमस्कार और आदाब।
1: उगते सूर्य के देश से सभी श्रोताओं को रंजना सिंह का भी नमस्कार।
2: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिचिवा नमस्कार। फिर आया एक नया सप्ताह और लेकर आ गए हम आपके पत्रों के उत्तर और जापान के बारे में कई जानी अनजानी रोचक बातें।
0: कामायनी जी, रंजना जी, आपको और हमारे सभी मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की अनेक शुभकामनाएं।
2: आपको भी बहुत बहुत बधाई।
1: सभी को अनेक शुभेच्छा। और आप बताइए, आपने स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया?
0: देखिए, भारत से दूर इतना जोर शोर से तो नहीं मना सकते हैं, लेकिन हाँ, भारतीय दूतावास में झंडा रोहण समारोह में जरूर शिरकत कर सकते हैं। और जब तिरंगे को लहराता देखती हूँ ना, तो मन में खुशी और गर्व महसूस होता है।
2: जी, सही कहा आपने। लेकिन एक ही दिन देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होने की बजाय, मेरा मानना है कि हम अपने दैनिक कृत्यों से देश प्रेम दिखा सकते हैं।
0: विचार तो बहुत बढ़िया है, तो चलिए अपने श्रोता मित्रों से ही पूछा जाए कि उनके विचार में देश प्रेम के लिए क्या करना चाहिए।
2: अगले पत्र में जरूर बताएं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पत्रों का सिलसिला शुरू करते हैं। झारखंड जमशेदपुर से SP शर्मा जी के इस पत्र से। शर्मा जी ने योग दिवस पर चरी के देश से कार्यक्रम की प्रस्तुति को बेहद पसंद किया है।
0: अच्छा।
2: हाँ, लिखते हैं, योग दिवस पर प्रसारित चरी के देश से कार्यक्रम सुना था। इस प्रोग्राम में योग के महत्व के साथ जापानी प्रैक्टिशनर द्वारा भारत में आयोजित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने और इतिहास रचने की प्रेरक कहानी सुनी। बढ़िया लगा। योग तो जीवन में नया जोश और उत्साह भर देता है और जीवन को ही नया बना देता है। इस तरह की प्रेरक कहानियों को आगे भी सुनाते रहिए। शुक्रिया और शुभकामनाएं।
1: शर्मा जी, कार्यक्रम पसंद करने के लिए आभार, धन्यवाद। वाकई योग जीवन में नई ऊर्जा भर देता है।
0: जी हाँ, और इस साल की थीम तो हम सभी के लिए जरूरी है, स्वस्थ आयु के लिए योग। वैसे शर्मा साहब, मीनाक्षी मियोको जी के साथ हुई भेंट वार्ता की वीडियो अब वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसको भी जरूर देखें। उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह से योग को अपनाया है, वो वाकई प्रेरणादायक है।
2: मित्रों, आप सब भी जरूर देखें। इसकी लिंक NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के फेसबुक पेज पर पिन की गई है। इस पेज पर जाते ही सबसे ऊपर आपको ये लिंक मिल जाएगी।
0: अच्छा, आप तो देखें ही, अपने मित्रों परिजनों के साथ भी इस लिंक को साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और लोग इससे प्रेरणा लेकर स्वस्थ जीवन के लिए योग अपनाएं। रंजना जी, देख रही हो, आपने अगला पत्र उठा भी लिया है, किसका खत है?
1: जी, ये पत्र है ओडिशा के सिंगा से हमारे नियमित श्रोता सुरेश अग्रवाल जी का।
0: अच्छा।
1: लिखते हैं, 9 अगस्त को साप्ताहिक कार्यक्रम चेरी के देश से के अंतर्गत मेरे पत्र के उत्तर को सुनकर मन कुछ देर के लिए भीतर तक उदास हो गया। मन को थोड़ी निराशा अवश्य हुई, क्योंकि वर्षों से जुड़े इस आत्मीय रिश्ते में कहीं न कहीं एक छोटी सी आशा भी मन में पलती रही थी। फिर भी मैं हृदय से आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी भावनाओं को अपने कार्यक्रम में स्थान दिया और मेरे मन की बात को श्रोताओं तक पहुँचने का अवसर दिया।
0: सुरेश जी, यकीन मानिए, आपको निराश कर हमारा दिल भी दुखी है, लेकिन कई बातें हमारे वश में नहीं होती हैं। और देखिए, सुरेश जी ने अपने पत्र में आगे लिखा है, भाई राम कुमार नीरज जी का भी विशेष आभार, जिन्होंने मेरे प्रति इतना स्नेह, सम्मान और आत्मीयता प्रदर्शित की। आगे क्या संभावना बनती है, यह तो समय ही बताएगा। जीवन में कुछ दरवाजे भले ही बंद दिखाई दें, लेकिन उम्मीद का एक छोटा सा दीपक मन में हमेशा जलता रहता है। बहरहाल, एक बात आज भी उतनी ही दृढ़ता से कह सकता हूँ, जब तक सांसों में सांस है, हिंदी के प्रति हमारा प्रेम और हिंदी सेवा का ये साथ यूं ही अनवरत बना रहेगा। परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, ये रिश्ता और ये समर्पण कभी कम नहीं होगा। आपकी स्नेह व आत्मीयता के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: सुरेश जी, आपको भी अनेक धन्यवाद. आप जैसे श्रोताओं का निस्वार्थ प्रेम और निष्ठा ही हमारा संबल और हौसला है.
0: जी बिल्कुल सही कहा. और देखिए, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से हमारे प्रिय श्रोता मित्र आर एस विजय कुमार ने सुरेश जी की जापान

0: जापान यात्रा की ख्वाहिश पर लिखा है। 2 अगस्त के चेरी के देश से कार्यक्रम में रेडियो जापान के बहुत ही पुराने श्रोता एवं मेरे घनिष्ठ मित्र सुरेश अग्रवाल जी के पत्र का जवाब देते हुए आपने उन्हें जापान आने का निमंत्रण दिया तो एक क्षण के लिए मैं स्तब्ध रह गया। लेकिन आपने जब ये कहा कि वे अगर जापान घूमने आए तब वहाँ जापान में घूमने का सारा प्रबंधन रेडियो जापान हिंदी सेवा के सदस्य करेंगे, ये बात सुनकर तो मन एकाएक ठंडा पड़ गया। दरअसल मुझे और सुरेश अग्रवाल जी को बड़ी आशा थी कि NHK हिंदी विभाग की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपने बहुत ही पुराने एवं नियमित श्रोताओं के लिए कुछ विशेष आकर्षण होगा। हम तो बस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। अगर हमें निजी तौर पर कभी जापान भ्रमण करने का अवसर मिला तो हम जरूर आपका आश्रय लेंगे और NHK स्टूडियोज में भी आप सभी सदस्यों से मुलाकात करेंगे।
1: RS विजय कुमार जी जरूर जरूर जरूर पधारे, हम सभी आपके स्वागत में तैयार खड़े मिलेंगे। जहां तक NHK वो जापान से हिंदी भाषा में प्रसारण की 70वीं वर्षगांठ मनाने की है तो उसमें पूर्व प्रसारित कार्यक्रमों के जरिए यादों के झरोखे में झांका गया था। यकीन माने वो भी आसमान से चांद तारे तोड़कर लाने जितना ही कठिन था।
2: सही कहा, क्योंकि इन 7 दशकों में प्रसारण और रिकॉर्डिंग आदि के तरीकों और मशीनों में जबरदस्त बदलाव हुआ है।
0: जी बिल्कुल, और RS विजय कुमार जी ने आगे लिखा है, इस पत्र के माध्यम से मैं 28 जुलाई को दक्षिणी जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर में आए भीषण भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। सचमुच जापानी प्रशासन और जापानी लोगों की दाद देनी होगी कि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को झेलने में और उनका सामना करने में वे कितने सतर्क रहते हैं। NHK हिंदी के वेबसाइट पर आपने इस भूकंप के कुछ तस्वीरें जो साझा किए उसे देखकर तो मन विचलित हो गया। जब तस्वीरों को साझा करने की बात चली है तो एक वीडियो पर अपनी बात रखना चाहूंगा जिसे हाल ही में आपने साझा किया। सांसा ओदोरी उत्सव के वीडियो में नर्तकों ने जिस प्रकार से बांसुरी एवं ढोल बजाते हुए अपना नृत्य प्रदर्शन प्रस्तुत किया वो सचमुच एक भव्य दृश्य था। ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि ये रोमांचकारी नृत्य जापान की एक प्राचीन एवं पारंपरिक नृत्य है जिसे लोग अपनी खुशी का इजहार करते हुए प्रस्तुत करते हैं।
2: विजय कुमार जी, वाकई जापान में जिस साहस और तत्परता से आपदाओं से निपटा जाता है वो प्रशंसा योग्य है। कुमामोतो भूकंप के समय एक अस्पताल में सर्जरी चल रही थी। डॉक्टरों और नर्सों ने जिस साहस से रोगी को बचाने की कोशिश की उसकी वीडियो फेसबुक पर साझा की गई थी।
1: फेसबुक पर कुमामोतो और कोलंबिया के हालिया भूकंप पर कई लोगों ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। अस्पताल डॉक्टरों की निस्वार्थ सेवा पर माही मुकेश वादी, अशोक थापियाल, हितेश सोलंकी, बलवंत सिंह, दीपेश बसनेत, विद्या झा, अमोल पवार, सोनू राठौड़, सुषमा सिन्हा, लीला देवी, मंजू ठाकुर, पूजा जायसवाल ने इमोजी के जरिए आभार व्यक्त किया है। सौरभ यादव लिखते हैं, डॉक्टरों की इस निष्ठा को देखकर लगता है कि सच्ची सेवा करने वाले लोग अब भी हैं। गजधारा और आशा कटारिया ने डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा है।
2: वाकई अस्पताल के सभी लोगों ने विपत्ति के समय बड़ी सहजता दिखाई थी, सजगता से काम किया था। जापान पर बरसी अणु बम विभीषिका को 81 वर्ष बीत गए हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में स्मृति सभाओं का आयोजन किया गया जिनकी वीडियो पर भी कई लोगों के संदेश मिले हैं। राहुल भारद्वाज लिखते हैं, जापान हमारा अभिन्न मित्र देश है और हम उनके सुख दुख के साथी हैं।
0: वीरा जी लिखती हैं, एक ऐसी दुनिया की कामना करती हूँ जहाँ फिर कभी ऐसी त्रासदी ना हो, परमाणु खतरा रहित संसार की कामना में सब साथ आए। वहीं आलोक शुक्ला लिखते हैं कि ये मुझे दुख से भर देता है, अणुबम हमले के पीड़ितों को भारत की ओर से गहरी संवेदना। भारत और जापान महान देश हैं और दोनों के बीच मैत्री हमेशा प्रगाढ़ रहेगी।
2: और अब समय हो चला है श्रोताओं को फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो कृपया नोट करें हमारी फ्रीक्वेंसी।
3: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
2: कार्यक्रम चेरी के देश से में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और ये एक लाइन का पत्र है धर्मपाल पनिहार जी का। लिखते हैं, जापान में रेल यात्रा के प्रकार और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देने की कृपा करें।
0: अरे वाह धर्मपाल जी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया है। जापान की सुचारू रेल व्यवस्था, व्यापक नेटवर्क और समय की पाबंदी के किस्से तो जग जाहिर है। ये जापान के सामाजिक ढांचे का अहम हिस्सा है जो लोगों के दैनिक जीवन और आर्थिक उन्नति को प्रभावित करता है।
2: जी, जापान के उत्तर में होकाइडो से लेकर नीचे दक्षिण में क्यूशू तक रेल की पटरियों का व्यापक जाल बिछा है। देश के किसी भी कोने में घूमने जाना हो तो यकीनन उसके निकट तक रेल सेवा जरूर मिल जाएगी।
0: वाकई, और समय की इतनी पाबंद की क्या ही कहें, 15 सेकंड की देरी हो जाए तो उसके लिए भी माफी मांग ली जाती है।
1: सही कहा। रेल सेवा की पाबंदी ऐसी है कि ट्रेन की रवानगी के समय से आप घड़ी मिला सकते हैं। इसके चर्चे तो दुनिया भर में मशहूर हैं। टोक्यो महानगर और वृहद टोक्यो में रेल सेवा का बहुत घना जाल है जिसमें सतह पर चलने वाली जापान रेलवे तथा भूमिगत रेलवे सेवा, टोक्यो मेट्रो और निजी कंपनियों की अनेक ट्रेनें हैं जो शहर के कोने कोने तक सही समय पर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं। फिर चाहे दफ्तर जाना हो या स्कूल या फिर शॉपिंग, सभी जगह ट्रेन से आराम से जाया जा सकता है।
2: जी, रेल सेवा टोक्यो जैसे महानगर की रीढ़ है। कितने लोग हैं जो टोक्यो से बाहर रहते हैं और हर रोज ट्रेन से काम करने शहर आते हैं। हमारे सभी साथी भी आज क्या हमेशा ही ट्रेन से ही दफ्तर आ पहुंचते हैं।
1: जी
0: हाँ, टोक्यो जैसे शहर में तो गाड़ी रखने की भी आवश्यकता नहीं है, मेट्रो और ट्रेन से हर जगह पहुंच जाओ। इस शानदार सेवा के साथ ही इनकी जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है ना, वो है हर ट्रेन में जबरदस्त सफाई। ट्रेन के अंदर और बाहर स्टेशन पर पूरी साफ सफाई दिखती है, जबकि स्टेशनों पर आसानी से कचरा पात्र नहीं मिलता है।
1: ट्रेनों की बात हो और जापान की प्रसिद्ध सुपर फास्ट ट्रेन शिंकानसन को आप कैसे भूल सकते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तोकाइडो रेल सेवा से इसका जाल बिछना शुरू हुआ था। 1964 में टोक्यो ओलंपिक खेलों के अवसर पर इसका शुभारंभ हुआ। तब से तोहोकु, होकुरिकु और क्यूशू आदि तक इनका विस्तार हुआ है। रूट के अनुसार इनकी रफ्तार 280 से 320 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाती है।
2: यानी टोक्यो से ओसाका की 500 किलोमीटर की दूरी मात्र 2.5 घंटे में पूरी। सुबह ओसाका काम से जाओ और रात को वापस घर, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी कमाल है। दिन के सबसे व्यस्त समय में टोक्यो से ओसाका के लिए 1 घंटे में 13 ट्रेन चलती है, यानी हर 5 मिनट में एक ट्रेन जो क्योतो, शिजुओका, नागोया जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ती है।
0: अभी देखिए ना, देश भर में उबोन की छुट्टियां चल रही हैं। इन दिनों अधिकांश लोग अपने गृह नगर जाते हैं, इसलिए शिंकानसेन हो या मेट्रो, हर जगह लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिलेगी। फिर भी कोई देरी नहीं, ना कोई धक्का मुक्की। जानती है 1964 में शिंकानसेन की शुरुआत से अब तक 10 अरब से ज्यादा यात्री इसमें बैठ चुके हैं, लेकिन दुर्घटना की दर ना के बराबर।
1: जी वो तो है। और देखिए, भारत के कितने शहरों की मेट्रो सेवा भी तो जापानी तकनीक से ही बनी है।
0: जी बिल्कुल।
1: दिल्ली में मेट्रो के बिना जीवन तो आप सोच भी नहीं सकते हैं।
0: बाकी
1: पुरानी दिल्ली से गुड़गांव तक का सफर करीब 1 घंटे में आसानी से तय हो जाता है। सड़क के ट्रैफिक जाम की कोई चिंता नहीं है अब।
2: मुझे तो अहमदाबाद से मुंबई तक शिंकानसेन चलने का इंतजार है। इसमें जापानी तकनीक ही नहीं, लोगों को प्रबंधन का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: अच्छा, ये तो बात हुई असली ट्रेनों की, लेकिन बच्चों में शिंकानसेन के खिलौने कितने लोकप्रिय हैं। पेंसिल, रबर, स्केल, बैग, हर तरह का सामान मिलेगा जिस पर उनकी प्रिय शिंकानसेन बनी है।
1: उम्मीद है धर्मपाल जी के साथ ही हमारे अन्य श्रोता मित्रों को भी जापान की रेल सेवा पर ये जानकारी पसंद आई होगी। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। आप हमारी वेबसाइट पर आज के कार्यक्रम को 1 सप्ताह तक सुन सकते हैं।
0: और हाँ, वेबसाइट और फेसबुक पर कार्यक्रम की लिंक को अपने दोस्तों मित्रों के साथ

0: भी साझा करें। और कमायनी जी, रंजना जी, इस सवाल के बाद आज मुझे अपने एक प्रिय श्रोता मित्र नजीमुद्दीन जी की याद आ गई, जो अपने पत्रों में हमेशा एक सवाल किया करते थे।
1: वाकई उनकी इन दिनों अनुपस्थिति बहुत हम महसूस कर रहे
0: जी,
1: हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: साथ ही अगर आप जापानी ट्रेनों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर रेलवे किंगडम जापान समय की पाबंद शिंकानसेन और जापान रेलवे जनरल श्रृंखला भी जरूर देखें, जहां आपको रेल सेवा में आ रही नवीनतम तकनीक आदि पर विस्तृत जानकारी मिलेगी। इसकी कमेंट्री अंग्रेजी में है लेकिन साथ में हिंदी सबटाइटल्स हैं।
2: हमने ट्रेनों पर इतनी बात की तो जाने से पहले क्यों ना इन्हीं पर एक जापानी गीत सुना जाए।
1: क्यों नहीं, तो आइए सुनते हैं ये गीत देंशा नो मादो कारा, यानी ट्रेन की खिड़की से, जिसे स्वरबद्ध किया है बैंड ग्रुप बैक नंबर ने।

0: मित्रों, आप गीत का आनंद लें और एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रिला जैन को,
1: कामायनी सिंह को
2: और रंजना सिंह को
3: सायोनारा, नमस्कार।